0: वकाय सिक्या मंत्र तुम सिपारे नयो मी दे रसी मकला जन नर नो मस निजाय नु जो फो नो जन तंतरा नई फंकला जान नियनार नौ मौत नौ जाय नो निफम दम पुनौ ईसनौ ईसनौ अरे मंत्र मस नय नौ आर मितुट्रा तो नथ नय निलालन फनानो मसन कुंडेतु जाय म्यारा मंकला जानौ तुम पुओ फेनो फनानो मस निजाय कौता फारे मार न तुकुआम नौ अवनात निजो फन पुंपवाना ईसौ इनौ नेफा नुम्ब नय इनौ नेफा न्यारो नय इनौ नुमे नय फुनायत मिल जाय रि तुम पदे मंत्रायो फा अमेसाव निविसाव त्यावेंचिन फनानो मास निजाय वेंचिन फिताइनाव जाय का आई तस्यादे सुआ जयाजु निवो फिदनाव अम्यलालन जो फन पुंपवाना यरा नमाना तंतेरा का इसाव नुने अम्य नारनाव रि जेसो क्रिस्ति तुम्पनाय नुआमेतानाया निफंगतानाय आमेन रेवन मलाला हेनू यमने फना जान सदे सारन तेन मन बारन सुतपुन देमन तम सिक आरक सहिता ओमनी सुरथमसन अमने नारन जेसु त्यावन जेओवर युल नुमास नरेट म्यार निमार न जेओव आर ममाली निप्यावनाव न इस मयरेजा अरो कतांजक नुफुनरेव ienareo rehetra izay manantena an'i Jehovah anafinazy ao amin'ny fiafenana eo anatenao ianao mba tsotratsy ny tetidratsy ataon'ny olona izy hampihery azy ao an-tranonao ianao mba tsy ho azo ny lela mifandritra izy amen
1: sabatra manitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah sabatra izay mitandrina teny fahavolomeny ka mitady azy